एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखहो प्रभु नानक दे कर हाथ फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती ला।

जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

मन साची मन साची मन संगुर मन हरन मन संगल मन हर को नाम हर को निसंगुर नाम नग पहचान।

जैसे एक नद ते तरंग को डुबजत है पान के तरंग सब पान ही कहाँगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत पच केते अच वच हो पच उड जाएंगे केते नाभ बीजी अच पच कौ करेंगे पच कीतक प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे तेज ज्यो तेज माया तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगी गुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल मैं डुबत किते आग मैं जरत है किते गंग बासी किते मदीना मक्का निवासी किते के उदासी के परमाई फिरत है करवत सहत किते भूम मैं गडत किते

ंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अपेखंग अजूनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे पर्यंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अक्षयाद अद्वै विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अपंगे नमो आद अपंगे किते कृष्ण से कीट कोटाए उपाय उसारे कड़े फिर मेटे बनाए अगाधे अभय अद्वै विनाशी पर्यंग परा परम पूर्ण प्रकाशी न आधंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न मरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंस नेहंस नाते उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाते न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे न सोभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण न रंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग अभूतंग अभेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैव सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अचयादत्व अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अपंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पहायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न परमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभायाद अनुक्तंग प्रतापी अयुक्तंग अक्षयाद अविक्ते अथापि विभुक्तंग अक्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न परमंग न धर्मंग न साकी न भर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न बाकी न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहू कंज के मंज के परम भूले कहू रंग के राज के धर्म अलूले कहू देश के भेस के धर्म धामे कहू राज के साज के बाज तामे कहू अचर के पछर के सिद्ध साधे।

कर्म के हरम जाने, कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने। कहूँ चार चेष्टा, कहूँ चतुर रूपं, कहूँ परम प्रज्ञा, कहूँ सर्वभूपं, कहूँ नेह गृहं, कहूँ देह दुखं, कहूँ औषधि रोग के सुख सुखं, कहूँ देह विद्या, कहूँ दैत्य।

दान भी हो, कहूं जच विद्या तरे मान भी हो, कहूं राशि हो, कहूं राज कन्या, कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रष्ट पुण्या, कहूं वेद विद्या, कहूं व्योम पानी, कहूं कोक की काव कथा कहानी, कहूं अद्र सारंग, कहूं पद्र रूपं, कहूं मद्र पानी, कहूं क्षुद्र

कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तुर्की पारसी हो कहूं पहलवी पश्तवी संस्कृति हो कहूं देश पाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं ओम पूजा कहूं देव चर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या नग कहूं नाग बानी कहूं गारड़ू गुड़ कथा कहानी कहूं अछरा पछरा मछरा हो कहूं वीर विद्या भूतन प्रभा हो कहूं छाल छाला तरे छत्र धारी कहूं राज साजक ति राजा तिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्धदाता अचेति अचयाद अद्वै विधाता न त्रस्तं ग्रस्तं न ग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं त्वस्तं अपूते त्वप्रसाद पादड़ी छंद अव्यक्त तेजन भव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै अनासन तुट तेजन खुट भंडार दाता तुरंत सर्वं प्रकार अनभूत तेजन छिजगात करता सती हरता सनादासन अटोलन भूत कर्म दाता दयालन भूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र व्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भर्म नहीं धर्म ध्यान जय नेह के नहीं व्योतपा जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह के नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं परम भीख जय कर्म भर्म नहीं जात पात जय नहीं नेह के नहीं पितृ मात जय नाम

अलग रूप आसन अडोल अमित जह अमित तेज अच्छा अतोल जह ध्यान काज मुन जन अनंत कई कल्प जोग साध तुरंत तन सीत काम बरखा सहंत कई कल्प एक सा आसन बितंत कई जतन योग विद्या विचार साधन तद पावत ना पार कई उर्दपा देसन परमंत कई उर्द मद पाव झुलंत कई सिमरत शास्त्र उचरंत वेद कई को काव कथत कतेव कई अग्नहोत्र कई पौना हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र

तीर्थ भरम सो भरम कई अग्निहोत्र कई देवकर्म कई करतबीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत न पार कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म कहीं सिमरत शास्त्र उचरत सो कर्म न्योली याद कर्म कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मको बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्धचार कहूं करत

निवास कई भ्रमत देश दे सनी उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंत परजंत नहीं तदपदास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु

कंपो मेर पयाल पुहंग तप ताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर पलंग अनखेद स्वरूप भेद अभ्यंग अनखंड अछूत अनखंड अभूत अछेद अछयंग अनकाल अपाल दयाल स्वंग जटटियंग मेरे आकाश पुहंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चियंग देव अदेव परंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रुखंग जय ताप ना साप ना सोख सुखंग जय रोग ना सोग ना भोग भयंग जय खेद ना पेद ना छेद छयंग जय जात ना पात ना मात पितंग जय रचियंग छत्री छत्र शितंग जय राग ना रेख ना रोग भणंग जय द्वैख ना दाग ना दोख गणंग जय अंडह ते ब्रह्मण रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज ताम तेज तेज की अनुभव पदया प्रचंड लियो श्री सिंद्रो बेंद नगिंद नगंग श्री जच गंद्र फणंद भुजंग रज देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सीत दूत भुजंग किए देव अदेव सराध पतंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग पुहंग जय पह किन्नर जाच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भव भूत भविक भवान तुवंग जय अंडज जीर अंडज सीतज जीर रजंग रच भूमि आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास की उफल फूल करी भुआ मेरे आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी सहदीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय।

छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेख रुगंग जय सोग ना भोग ना जोग जुगंग हुआ भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंगण किन्नर जच भुजंग रचि मन मानक मोती लाल सुचि अन पंज प्रभान गंज बृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय भेद कतेव अनंत कहा जय भूत अभूत न भेद लहा जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध अधो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तप ताप करै नहीं नै

अदग है अभूत अपरम अभीघ है न तात्मात जात है न पात चहन वर्ण है अदेघ असेघ अभीघ है विश्वदी विश्वपर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वपर्ण है जिमी जमान के विखै सदीव कर्म परम है अद्वैख है अभेघ है अलेखनाथ जानी है सदीव सर्वठौरमा विशेख ज्ञान मानी है न चंद्रमा न मंत्रमा न तंत्र न जंत्रमा न तंत्रमा न मंत्र बसिया वही पुराने कुरान नीत नीत कै बतावई न कर्म मै न धर्म मै न परम मैं बताई है।

है न पीत है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रिय है पवित्र है पुनीत है प्रमाद है न सीत है न सोच है न क्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है।

पूरा, दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा। कहा रंग राजा कवन कर हर हरक सोग है कवन को, रोगी रागी कवन कहो तत्व मोह तवन दोहरा। कवन अरिष्ट को पुष्ट है कहा सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को पृष्ठ है कहो सक

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन याद प्रति चुरासुर मारण पद उधारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छी अखंडी तीज प्रचंडे खंडी दंडे अलखमती जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन राम कप्रदन छत्र छिति आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप यति चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन तुम्र धुनसन मैख मथि दानव प्रहारन नरक निवारण अद उधारण उर्दि अधि जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन राम कप्रदन।

विश्व विध्वंसन सृष्टि करे। दामनी प्रकाशे उन्नतन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले। दानवी पर करखण सर्वर वरखण दुष्ट पर धरखण बितल तले। अष्टायद बाहन बोल बाहन संत पनाहन गूढ़ गति जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आदनाद अगाध बिरति। दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण।

अत्र के चलैया चित छत्र के तरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महामान के बटैया अवसान के दिवैया कटैया जा मजाल है। युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूं के मान है। ज्ञान हूं के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय द्यावे गुरु कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधा पवन साधना कतेक पाते अर्प के अरबी आराधा तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मानक अंधारी कुरेसी जान पच्छम के पच्छमी पछाना निज काम है। मरहटा मघिल तेरी

पल पाछे पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राव कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते ब्यासे प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पहना पूरन को पावे पार।

प्रडोल बनतन तुरंत काक मृग महान जहता प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ला लहत मोर सिर तुर है जान मन मथै चार कुदरत कमाल राजक रही करुणा निधान कामल करी जय तै बिलोक तह तै प्रसोहा जान बहम तुज मोहरू संग बृहत करुणा निधान जय तै।

जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया, मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया। गुर

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडियावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा।

काच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दरछ पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरनन मन रहे हमारा अपना जान करो पतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम घावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करिये सब बैरन को आज संघरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास नवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करी हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पपधरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रगासा सकल काल का किया तमासा।

आप सवारी सेवकण को सेवगुण सुख दियो सत्रण को पल मोह पद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचरिय स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पट पट की जाने जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी भूज उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का छीनत न भव आप आपनी बुद्ध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतभुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं समट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अवरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे सुधुजताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा।

कह चौपई सम सत्र सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कह जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री

ठाड़ भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुम रे ध्यान को, नितुड़ ध्यान है संत,

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छह सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर।

मान्यो सिमृत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे।

सब नागला सुमरत स्वामी सो क्या मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा।

घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विटो, जिस दियां ए वडियाइया। कह नानक सुन हो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दू तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, दुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन।